Feel the sound. Feel the breeze. Feel the breeze. FM 100.

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था। साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न

0: फायदा दे।
1: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
2: एंड
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
2: एंड
5: इन्वेस्ट पॉक से इन्वेस्टमेंट
6: आसान, महफूज और मुनाफा।
2: एंड
7: बेबक आज ही अपने बैंक से बनवा।

0: It's 8:15 a.m.
1: This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: Mizan debit card pe itne discounts aur debit card pe koi charges nahi, yani double maze.
3: Mizan current account. Ab checkbook, debit card issuance aur pehle saal ke liye SMS alerts mile baghair charges ke. Aur iske saath mile behtareen banking services. Aaj hi current account khulwaye. Aur aap bhi Mizan current account se fayda uthaye. Mizan Bank, the premier Islamic bank.
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? Schwabe सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और Schwabe सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.

0: बेबाक, आज ही अपने बैंक से बनवाए।
1: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई है, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. हमारा तो सारा काम चेक्स का होता है जी, और 10 में से 8 चेक मीजान के आते हैं। जब से मीजान करंट अकाउंट खोला है, क्लियरिंग का इंतजार ही नहीं करना पड़ता।
2: मीजान करंट अकाउंट, अब चेक बुक, डेबिट कार्ड इश्यूएंस और पहले साल के लिए एसएमएस अलर्ट्स मिले बगैर चार्जेस के, और इसके साथ मिले बेहतरीन बैंकिंग सर्विसेज। आज ही करंट अकाउंट खुलवाएं और आप भी मीजान करंट अकाउंट से फायदा उठाएं।
3: मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।

0: उसे फायदा दे।
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।

0: दे बेबक आज ही अपने बैंक से बनवाए
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दो।

0: चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: अपने टेक आइडिया को इग्नाइट करें विद प्राइम मिनिस्टर स्पार्क एंड एलिवेट प्रोग्राम, अ नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन फंडिंग इनिशिएटिव। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए तक और कामयाब प्रोटोटाइप्स को मार्केट रेडी सॉल्यूशंस में बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए तक फंडिंग। अप्लाई बिफोर 26 अक्टूबर एट segms.ignite.org.pk। स्पार्क द आइडिया, एलिवेट द इम्पैक्ट। अ प्रोजेक्ट ऑफ इग्नाइट, मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम।

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: हमारा तो सारा काम चेक्स का होता है जी, और 10 में से 8 चेक मीजान के आते हैं। जब से मीजान करंट अकाउंट खोला है, क्लियरिंग का इंतजार ही नहीं करना पड़ता।
3: मीजान करंट अकाउंट, अब चेक बुक, डेबिट कार्ड इश्यूएंस और पहले साल के लिए एसएमएस अलर्ट्स मिले बगैर चार्जेस के, और इसके साथ मिले बेहतरीन बैंकिंग सर्विसेज। आज ही करंट अकाउंट खुलवाएं और आप भी मीजान करंट अकाउंट से फायदा उठाएं।
4: मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम हैं। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: This program was brought to you by AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram. And
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
2: InvestSpark se investment aasan, mehfooz aur munafa.
0: And
3: Paybuck. Aaj hi apne bank se banwaye.
4: पेपाक कार्ड है?
5: है तो फायदा है,
6: पेपाक है
5: तो ऐड टू कार्ड है,
6: पेपाक है
5: इन स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे।
7: खालिस अज्जा भरोसे मन शिफा श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई है, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।

0: 8:30 AM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil jo hai aaram.
2: Kisi bhi insaan ke liye sabse ahem hoti hai uski sehat.
3: Kisi bhi shakhs ko dekh ke uski sehat ke bare mein andaaze na lagaye.
2: Mujhe pata hai ki mera wazan zyada hai, lekin iska matlab ye nahi ki main walk nahi karta.
4: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
3: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
2: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम हुई।
4: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
3: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
4: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाई,
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
3: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
2: आइए वेट से आगे का सोचें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: Give your breakthrough tech idea the launchpad it deserves with Prime Minister's Spark and Elevate program, a national research and innovation funding initiative, up to ₹100 million funding to convert bold ideas into functional prototypes, and up to ₹200 million to transform functional prototypes into market-ready solutions. Apply today at segms.ignite.org.pk. Last date 26 October. Spark the idea, elevate the impact. A project of Ignite, Ministry of IT and Telecom.
6: पेपा कार्ड है
7: तो फायदा है।

0: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
1: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

0: 100.1 FM, your location for maximum music.
1: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
2: Paybuck. Aaj hi apne bank se banwaye.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: सेल्फिया, अरे बिजलियां हैं बिजलियां, हाय रे मेरी सेल्फिया।
1: There's only one station that keeps you moving all day long.
2: FM 100. 100.

0: 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by Paybuck. Aaj hi apne bank se banwaye.
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
0: अजान ज़ोहर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तआवुन से।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएम 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में नमाज़े ज़ुहर का वक्त हो गया है।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशाद बारी ताला है, कहो क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारें जो ना हमारा भला कर सके ना बुरा, और जब हमको अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा दिया तो क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं? फिर तो हमारी मिसाल ऐसे हो जैसे किसी को जिन्नात ने जंगल में भुला दिया हो और वो हैरान हो रहा हो, और उसके कुछ रफीक हो जो उसको रस्ते की तरफ बुलाएं कि हमारे पास चला। कह दो कि रास्ता तो वही है जो अल्लाह ने बताया है, और हमें तो ये हुक्म मिला है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमा बरदार बने। सूरह अनाम।
2: FM 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100.

0: FM 100. It's 1:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी जानने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है या ये 6 हिंसों का कोड भेज दें। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए? अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें। 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर। इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें। सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें। नंबर बंद या सस्पेंड न होने दें। व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल न करें। ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल। अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आपका अकाउंट फॉल कर देता है, बशर्ते कि सिम कार्ड आपके पास हो। सिम कार्ड सबसे अहम है। इजाफी तौर पर आप अपने नंबर और मसले की तफसील के साथ व्हाट्सएप सपोर्ट को ईमेल भी कर सकते हैं। रातों को फौरी इतला दें। अकाउंट बहाल होते ही अपने तमाम रातों को पैगाम भेजें, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था, बराह करम पिछले किसी भी पैगाम या दरखास्त को नजरअंदाज करें। इससे आपके दोस्त और खानदान मजीद नुकसान से बच सकते हैं। अब देखते हैं मुस्तकबिल में हैक होने से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। 2-स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी फॉलो करें। सेटिंग्स, अकाउंट, 2-स्टेप वेरिफिकेशन या 1-6 हिंसों का पिन सेट करें जो सिर्फ आपको याद हो। ईमेल एड्रेस जरूर शामिल करें। ईमेल शामिल करने से पिन दोबारा सेट हो सकता है। अकाउंट तेजी से फॉल हो जाता है, हैकिंग के इम्कान कम हो जाते हैं। तस्दीकी कोड कभी किसी के साथ शेयर न करें, चाहे पैगाम दोस्त का हो या किसी अदारे के नाम से हो। कोड शेयर करना सीधा अकाउंट हैक होने के बराबर है। जाली लिंक्स और ऑफर से बचें। मुफ्त इंटरनेट, इनाम, सरकारी या बैंक के जाली पैगाम से होशियार रहें। ऐसे लिंक्स पर क्लिक न करें। व्हाट्सएप लिंक डिवाइसेस चेक करें। सेटिंग्स, लिंक डिवाइसेस, अगर कोई नामालूम डिवाइस नजर आए तो फौरन लॉग आउट करें। फोन लॉक और बायोमेट्रिक इस्तेमाल करें। अगर फोन महफूज नहीं होगा तो व्हाट्सएप भी महफूज नहीं रहेगा। पिन, फिंगरप्रिंट या फेस लॉक जरूर फॉलो करें। याद रखें, व्हाट्सएप हैकिंग कोई तकनीकी जादू नहीं बल्कि ज्यादातर इंसानी गलती की वजह से होती है। थोड़ी सी आगाही और एहतियात से आप खुद को महफूज रख सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं और अपने दोस्तों को नुकसान से बचा सकते हैं।
2: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
3: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो तो अभी अपनी करीबी एचपीएल ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है
2: डोंट गो इनसाइड यू शुड हैव कम दिस अक्टूबर Emporium Mall opens its doors to your darkest fears. Enter the Halloween experience from 8th October to 22nd November. Rupees 900 per person or bring the whole family. 4 for rupees 3000 and shop, eat and play for rupees 30,000 and your entry is free. But once you enter, can you make it out?

Dennis. That's the killer.

जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।

0: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
1: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
0: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
2: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
1: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
0: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
2: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
1: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
2: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
0: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
1: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
0: आइए वेट से आगे का सोचे।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डोंट गो इनसाइड, यू शुड हैव कम। दिस अक्टूबर Emporium Mall opens its doors to your darkest fears. Enter the Halloween experience from 8th October to 22nd November. Rupees 900 per person, or bring the whole family. For rupees 3000 and shop, eat and play for rupees 30,000 and your entry is free. But once you enter, can you make it out?
5: पेपा कार्ड है?

0: अनेको तैयार, क्योंकि ये करते हैं AGS की मेंटेनेंस फ्री बैटरी पर एतबार। नो पानी, नो परेशानी।
1: अपने टेक्नोलॉजी आइडियाज को दें उड़ान विद प्राइम मिनिस्टर्स पार्क एंड एलिवेट प्रोग्राम, अ नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन फंडिंग इनिशिएटिव। बोल्ड आइडियाज को फंक्शनल प्रोटोटाइप्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 करोड़ रुपए तक, जबकि फंक्शनल प्रोटोटाइप्स को मार्केट रेडी सॉल्यूशंस में बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए तक फंडिंग। आज ही अप्लाई करें @segms.ignite.org.pk। आखिरी तारीख 26 अक्टूबर।

0: your entry is free. But once you enter, can you make it out?
1: पेपा कार्ड है?
2: है तो फायदा है।

0: पेपक आज ही अपने बैंक से बनवाए
1: नया पॉन्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. हमारा तो सारा काम चेक्स का होता है जी, और 10 में से 8 चेक मीजान के आते हैं। जब से मीजान करंट अकाउंट खोला है, क्लियरिंग का इंतजार ही नहीं करना पड़ता।
2: मीजान करंट अकाउंट, अब चेक बुक, डेबिट कार्ड इश्यूएंस और पहले साल के लिए एसएमएस अलर्ट्स मिले बगैर चार्जेस के, और इसके साथ मिले बेहतरीन बैंकिंग सर्विसेज। आज ही करंट अकाउंट खुलवाएं और आप भी मीजान करंट अकाउंट से फायदा उठाएं। मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: free, everybody come with me.
1: This is FM 100.
0: Around the world.
2: आप सुन रहे हैं FM 100, आपका अपना रेडियो स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
3: अज़ान इशा पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तआवुन से।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लाहौर और उसके मजाफात में नमाज इशा का वक्त हो गया है।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशादे बारी ताला है, जिन लोगों ने नेकुकारी की उनके लिए भलाई है और मजीद और भी, और उनके चेहरों पर ना तो स्याही छाएगी और ना रुसवाई, यही जन्नती हैं कि इसमें हमेशा रहेंगे। और जिन्होंने बुरे काम किए तो बुराई का बदला वैसा ही होगा और उनके चेहरों पर जिल्लत छा जाएगी और कोई उनको अल्लाह से बचाने वाला ना होगा। उनके चेहरों की स्याही का यह आलम होगा कि उन पर गोया अंधेरी रात के टुकड़े उड़ा दिए गए हैं, यही दोस्ती है कि हमेशा इसमें रहेंगे। सूरह यूनुस।
2: पेपा कार्ड है
3: तो फायदा है।

0: हमें फायदा दे।
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।
6: किसी दूसरे के नाम पर जायदाद खरीदना एक संगीन जुर्म है जिसे बेनामी ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये जुर्म कई शक्लों में हो सकता है। मुलाजमीन या रिश्तेदारों के नाम पर अकाउंट, जायदाद या कारोबार बनाना या फिर फर्जी अफराद के नाम इस्तेमाल करना। याद रखिए, कानून की नज़र में बेनामीदार और असल मालिक दोनों मुजरिम हैं। बेनामी कानून के तहत जायदाद जब्त, भारी जुर्माना और 7 साल तक कैद हो सकती है। बेनामी जायदाद की इत्तला अपने करीबी FBI दफ्तर में दें। इत्तला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा।
7: ये पैगाम पैमरा और FM 100 पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: at 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: Mizan debit card pe itne discounts aur debit card pe koi charges nahi, yani double maze.
2: Mizan current account. Ab checkbook, debit card issuance aur pehle saal ke liye SMS alerts mile baghair charges ke. Aur iske saath mile behtareen banking services. Aaj hi current account khulwaye. Aur aap bhi Mizan current account se fayda uthaye. Mizan Bank, the premier Islamic bank.
3: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जय सार्फिन के लिए *275 हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
4: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
6: Across the nation, there is only 100 FM.

0: बैटरी पर एतबार, नो पानी नो परेशानी।
1: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
2: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
1: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
3: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
2: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
1: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ।

0: बेबक आज ही अपने बैंक से बनवाए
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. हमारा तो सारा काम चेक्स का होता है जी, और 10 में से 8 चेक मीजान के आते हैं। जब से मीजान करंट अकाउंट खोला है, क्लियरिंग का इंतजार ही नहीं करना पड़ता।
2: मीजान करंट अकाउंट, अब चेक बुक, डेबिट कार्ड इश्यूएंस और पहले साल के लिए एसएमएस अलर्ट्स मिले बगैर चार्जेस के, और इसके साथ मिले बेहतरीन बैंकिंग सर्विसेज। आज ही करंट अकाउंट खुलवाएं और आप भी मीजान करंट अकाउंट से फायदा उठाएं।
3: मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
4: This is your music.

0: location for maximum music.
1: It's 8:30 p.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Battery hai to dil to hai aaram.
3: Don't go inside. You should have come. This October, Emporium Mall opens its doors to your darkest fears. Enter the Halloween experience from 8th October to 22nd November. Rupees 900 per person, or bring the whole family. For rupees 3,000, and shop, eat, and play for rupees 30,000, and your entry is free. But once you enter, can you make it out?
4: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
5: किसी दूसरे के नाम पर जायदाद खरीदना एक संगीन जुर्म है जिसे बेनामी ट्रांजैक्शन कहते हैं. ये जुर्म कई शक्लों में हो सकता है. मुलाजमीन या रिश्तेदारों के नाम पर अकाउंट, जायदाद या कारोबार बनाना या फिर फर्जी अफराद के नाम इस्तेमाल करना. याद रखिए, कानून की नज़र में बेनामीदार और असल मालिक दोनों मुजरिम हैं. बेनामी कानून के तहत जायदाद जब्त, भारी जुर्माना और 7 साल तक कैद हो सकती है. बेनामी जायदाद की इत्तला अपने करीबी FBI दफ्तर में दे. इत्तला देने वाले का नाम सीगाए राज में रखा जाएगा.
6: ये पैगाम पैमरा और FM 100 पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

The Mix. In the mix on the ones and twos. Live and direct. This is

0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो तो अभी अपनी करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है
0: It's 9 PM This time check is brought to you by Paybuck आज ही अपने बैंक से बनवाएं
2: किसी दूसरे के नाम पर जायदाद खरीदना एक संगीन जुर्म है जिसे बेनामी ट्रांजैक्शन कहते हैं ये जुर्म कई शक्लों में हो सकता है मुलाजमीन या रिश्तेदारों के नाम पर अकाउंट जायदाद या कारोबार बनाना या फिर फर्जी अफराद के नाम इस्तेमाल करना याद रखिए कानून की नजर में बेनामीदार और असल मालिक दोनों मुजरिम हैं बेनामी कानून के तहत जायदाद जब्त भारी जुर्माना और 7 साल तक कैद हो सकती है बेनामी जायदाद की इत्तला अपने करीबी FBI दफ्तर में दे इत्तला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा
3: ये पैगाम पैमरा और FM 100 पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया 100, where it's all about more. More barn.

0: Mix. In the mix on the ones and twos. Live and direct, this is
1: FM 100.

0: NPM. This time check is brought to you by Bebak. Aaj hi apne bank se banwaye.
1: किसी दूसरे के नाम पर जायदाद खरीदना एक संगीन जुर्म है जिसे बेनामी ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये जुर्म कई शक्लों में हो सकता है, मुलाजमीन या रिश्तेदारों के नाम पर अकाउंट, जायदाद या कारोबार बनाना या फिर फर्जी अफराद के नाम इस्तेमाल करना। याद रखिए, कानून की नज़र में बेनामीदार और असल मालिक दोनों मुजरिम हैं। बेनामी कानून के तहत जायदाद जब्त, भारी जुर्माना और 7 साल तक कैद हो सकती है। बेनामी जायदाद की इत्तला अपने करीबी FBI दफ्तर में दें। इत्तला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा।
2: ये पैगाम पैमरा और FM 100 पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: My heart, FM 100.

0: It's 11 p.m. This time check is brought to you by Paybuck. Aaj hi apne bank se banwaye.
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखाधड़ी, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम हैं। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: बॉडी पर एतबार, नो पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।

0: हाँ भाई अज फिर
1: जा यार काम कर अपना जा
2: देर हो रही है तुझे कॉलेज से
3: कितनी बार बोला है कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी

the ocean of music and splashes of sound. SM 100 Pakistan.